0: नेवी भी मीन आप शहनशाह बन के बैठ गए, अर्दली तो पहले ही आपका था, आप फील्ड मार्शल भी बन गए, फाइव स्टार जनरल भी बन गए, ये फायदे तो आपने ले लिए। उसके साथ साथ क्या हुआ वो भी आपको बता देते हैं। कश्मीर के अपना जो फलस्तीन और इसराइल का मामला है, उसमें वाजे तौर पर पूरी दुनिया में ऐसे ममालिक जो इसराइल के करीब तरीन या करीबी दोस्त समझे जाते हैं, उन मुल्कों में भी आप इसराइल के खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते। आपने देखा जिस जिसने किया उसको किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, सेनेटर मुश्ताक, उनकी अहलिया, उनके साथियों को मुतद्दद बार पाकिस्तान में इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वो गजा के हक में और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे। किसी ने फलस्तीन का झंडा उठाया तो वो आपने छीन लिया। सरीना होटल के सामने लोग मुजाहरा करना चाहते थे, आपने किस तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया। सो इस सबसे लगता क्या है? इस सबसे लगता यह है कि आप बुनियादी तौर पर कमिटेड हैं कि आपने अब पाकिस्तान में फलस्तीन का किसी को नाम नहीं लेने देना। तो फिर नौरीन खान नियाजी साहब ने जो सवाल उठाया वो होता हुआ तो हमने देख लिया, उनकी क्या सराई आपने हकीकत में बदली हुई है। आपकी जो इंगेजमेंट है इसराइल के साथ स्टीव विटकॉफ साहब या दूसरों के थ्रू, वो होती हुई नजर आ रही है सामने, उसके अगराजो मकासद होते हुए नजर आ रहे हैं। जो पीस फोर्स के अंदर फौज थी, इसराइल ने कहा कि हमें तुर्की की फौज कबूल नहीं है, पाकिस्तान की कबूल है, वो उन्होंने क्यों कह दिया? जाहिर है जो नौरीन खान नियाजी साहबा कहती हैं कि ये जो झड़प थी इसके पीछे असल में इसराइली एजेंडा था और ये सारा मिलीभगत से हुआ, तो वो होता हुआ तो हमें नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ख्वाजा आसिफ ने एक अमूमी सा ट्वीट कर दिया गजा के हक में, फलस्तीन के हक में, ये कोई बड़ा उन्होंने खतरनाक काम तो नहीं कर दिया, लेकिन पहले भी करते हैं लोग, पूरी दुनिया के लोग ट्वीट करते हैं। आपने उनसे ट्वीट एक दफा नहीं, एक से ज्यादा बार उनसे इसराइल के हक में करवाए हुए ट्वीट आपने डिलीट करवाए। तो फिर नौरीन खान नियाजी साहब ने क्या मुख्तलिफ कहा? यही बात उन्होंने कही है। उसके बाद आप इब्राहिम अकॉर्ड को मानने के लिए, उसको अच्छा पेश करने के लिए पाकिस्तान के अंदर मीडिया कैंपेन आपने चलवाई। कतर के खिलाफ, अल जजीरा के खिलाफ, जो बड़ी अच्छी कवरेज कर रहा था इसराइल के मामले की, गजा के मामले की, उसके खिलाफ आपने पाकिस्तान से टिक्कर चलवाए और उनको निशाना बनाया। तो ये फिर आप सब कुछ क्या कर रहे थे? नजर तो वही आ रहा। आगे चलते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान की झड़प हुई उसके अंदर नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी एक लफ्ज नहीं बोले। अब उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक वजह यह हो सकती है कि वो खौफजदा हों। अब नून लीग वाले कहेंगे हमारी लीडरशिप खौफजदा नहीं है, तो फिर अगर खौफजदा नहीं है, खौफ की वजह से नहीं उन्होंने दी, तो फिर जाहिर है फिर मुआहदा है कोई, फिर एग्रीमेंट है, फिर कोई अंडरस्टैंडिंग है कि हमने बयान नहीं देना, आप अपना काम जारी रखें। उसके आगे जो मोदी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नवाज शरीफ की रही, आम एक दूसरे से एक्सचेंज करने, साड़ियां, बगैर वीजे के बुलाना, जिंदाल को मिलना, वो नौरीन नियाजी साहबा करती रही हैं सब कुछ। जो ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि आज तक कोई जंग आपने नहीं जीती, वो नौरीन खान नियाजी साहबा ने कहा, तो कोई समझ नहीं आती। चौधरी साहब कुछ भी करते हैं, ये भूल जाते हैं कि नवाज शरीफ ने अजमल कादरी कहता है कि मुझे इसराइल भेजा था। बहुत सारे और मामला हैं ऐसे जो आपके सामने रख सकते हैं, जिससे वाजे हो जाता है कि जिन खदशात का इजहार नौरीन खान नियाजी साहबा ने किया, वो खदशात हमारी आंखों के सामने होते हुए हमें नजर आए। लेकिन दोबारा से, क्योंकि इन्हें डायवर्जन चाहिए होती है, उस बयान को पाकिस्तान में वायरल करवाया गया और उनको अब एक मुल्क दुश्मन अनासर या अनसर के तौर पर पेश किया गया। आगे
1: आप और हमवतन एक संग, नए रंग, नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84। ईमेल रेडियो स्नैपलाई हमवतन।

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: मोहतरम सामेन और नाजरीन, बाशुक्रैशी आपको इस इतवार के दिन सलाम और आदाब अर्ज करते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम बाशी के संग में एक ख़ास मेहमान को हमने बुलाया है, जिनसे हम डेनमार्क में पाकिस्तानी कम्युनिटीज के मसाइल और उनका क्या हल है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जैसे आपको पता है, 70 की दिहाई में पाकिस्तान से और दूसरे ममालिक से बहुत से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए, ताकि वो अपनी और अपनी फैमिली की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। लेकिन फिर अक्सरियत ने ये फैसला किया कि वो अब यहीं पे रहना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को भी बुला लिया, अपनी वाइफ्स को, अपने बच्चों को, और इस तरह इस मुल्क में अपनी ज़िंदगी शुरू की। आज डेनमार्क में पाकिस्तानी निसाद तकरीबन 30,000 लोग रहते हैं, जिसमें डेनिश सिटीज़न भी हैं और जिनके पास अभी तक पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है या जिनके पास दोनों ममालिक की शरीयत है। उन्होंने इस मुआशरे में बड़ी अच्छी तरक्की की है, तालीम, कारोबार, नौकरी और सियासत में भी अपना हाथ बिठाया है, और बहुत कोशिश की है उन्होंने कि वो इस मुआशरे में किसी न किसी तरीके से इस मुआशरे का एक हिस्सा बन जाएं। कुछ को मुश्किलात आईं, लेकिन बहुत से लोगों को ये बहुत अच्छे मौके मिले। लेकिन एक ऐसा शोबा है जिसमें कोई काबिल ज़िक्र पेशरफ्त नहीं हुई, और वो है, इंग्लिश में कहते हैं जेंडर इक्वालिटी, या मर्दों और औरतों के दरमियान बराबरी। हमें बहुत खुशी है कि हमारे स्टूडियो में एक बहुत फ़ाल खातून मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तानियों के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत करने के लिए हाँ की, और आज वो यहाँ पर मौजूद हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को हमारी गुफ्तगू नागवार लगे, लेकिन मुआशरे के मसाइल, अपनी कम्युनिटी के मसाइल पर बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो रोबीना ताहिर, बाशी के कॉर्नर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, खुश आमदीद।
2: शुक्रिया बाशी साहब, और मैं सब सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एक बात मैं कहना चाहूँगी, जो हमारे दरमियान जो भी बातचीत होगी उसमें मैं अपना वरियन दूंगी अपनी तरफ से, और उस मेरा मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि मैं किसी को हर्ट करूँ इस्लामी तौर पर या मेंटली तौर पर, या क्योंकि जो मैंने समझा है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं वो बयान करूँगी। कोई इससे मुत्तफिक होता है तो ठीक है, अगर वो समझता है कि हाँ ये बात ठीक है तो मैं उसको अपने आप पे लागू कर सकता हूँ या मैं इस रास्ते पे जा सकता हूँ, तो सो बिस्मिल्लाह चले। अगर वो समझते हैं कि मैं गलत हूँ तो इग्नोर करें।
1: ये अच्छा हुआ कि आपने शुरू में जो है इस चीज़ को क्लियर कर दिया। लेकिन इससे पहले कि हम मसाइल पर बात करें, सियासत पर बात करें, अपनी कम्यूनिटी पर बात करें, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सामईन और नाज़रीन को थोड़ा सा तारुफ तो करा दें कि उनके सामने जो शख्स बैठा वो है कौन।
2: जी, मैं शादी के बाद 2003 में यहाँ आई थी। मेरी एजुकेशन MBA फाइनेंस है, और मैंने पाकिस्तान में बाटा में काम किया था। तो उसके बाद जब मैं शादी के बाद इधर आई, तो पहले शुरू में तो मैंने काम नहीं किया, क्योंकि एजुकेशन यहाँ की जो लैंग्वेज है उसके लिए 1-2 साल लग गए। फिर बेटा हुआ, फिर उसके बाद मैंने जॉब की कोशिश की, तो लेकिन इतना मैं कोशिश नहीं थी करी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड का बिज़नेस, उनका टैक्सी का, तो वो संभालना शुरू कर दिया। फिर मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई, दो माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो जब वो थोड़े से बड़े हुए तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे भी जॉब करनी चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो बाहर बैठे हुए हैं वो इतना कमा रहे हैं कि वो हमें भी अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ के एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा हैं, जब तक या तो आपकी इतनी अच्छी सैलरी हो कि आप बैठ के खा सकते हो सिर्फ एक के, तो आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं।
1: अच्छा।
2: यहाँ पे तकरीबन मियाँ बीवी को इकट्ठा काम करना पड़ता है, अगर आपने अपने बच्चों को वो लाइफ देनी है जो यहाँ के लोगों की लाइफ है।
1: तो इसका मतलब कि आप यहाँ पैदा नहीं हुई, शादी के जरिए आई।
2: जी बिल्कुल।
1: और फिर आपकी तालीम भी पाकिस्तान में हुई।
2: जी,
1: है।
2: वहीं से।
1: तो ये बताइए कि पाकिस्तान की एक इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी की तालीम, उसको यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकी हैं?
2: जी बिल्कुल, मैंने शुरू में की है, क्योंकि फाइनेंस की थी, तो फाइनेंस तो बैंक वगैरह जगह पे होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती।
1: तो पाकिस्तान में तो किया आपने बाटा में काम?
2: मेरी अपने बॉस से लड़ाई रहती थी, वो जब मुझे कोई गलत काम करते थे मेरी उनके साथ लड़ाई हो जाती थी, आप मुझे ये कहते क्यों हैं, आपने ये गलत बात की क्यों। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलें, मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है, मुझे रियली आई लव ड्राइव।
1: रियली? तो टैक्सी ड्राइविंग का या बस अपनी गाड़ी?
2: नहीं नहीं, जहाँ भी,
1: जहाँ। अच्छा।
2: तो फिर मैंने वैसे ही एक दिन हमारे नेबर्स थे उनके पास, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा ये एक है, ये क्या है, फ्लेक्स ट्रैफिक के नाम से यहाँ पे एक उन्होंने फर्म खोली हुई है जो स्पेशल लोगों को या बच्चों को या बूढ़ों को एक स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वन डेस्टिनेशन टू लास्ट डेस्टिनेशन, यानी उनको टैक्सी वगैरह के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, कोई व्हीलचेयर पे होते हैं, कोई वॉकर पे होते हैं, बड़ी कंफर्टेबल है। तो मैंने उसके
1: वो जैसे एम्बुलेंस है उसका कैसे?
2: नो नो, एम्बुलेंस तो बिल्कुल डिफरेंट है ना,
1: जी,
2: वो तो आपको क्रिटिकल सिचुएशन में लेके जाती है। नहीं, ये नॉर्मल है, कोई बूढ़ा है, उसने अगर आप माशाल्लाह सीखे, अगर आपने कहीं जाना है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: मैं तो अपनी टांगे इस्तेमाल करता हूँ।
2: नहीं,
1: कुछ लोग हैं जिनको
2: नॉर्मल लोग भी, उन्होंने फैसिलिटी दी हुई है कि अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है, कोई गाड़ी पे नहीं जा सकता, फौजन को हॉस्पिटल जाना होता है किसी,
1: एग्जैक्टली
2: उसके पास अपनी गाड़ी है, लेकिन वहाँ पार्किंग का बड़ा मसला है।
1: जी जी जी।
2: तो वो फिर ये बुक करते हैं, इनका कोई अबन माउंट होता है साल का, तो वो फिर साल के कुछ खरीदते हैं कि मैं इतनी मरतबा, फिर वो अपने घर से लेके वहाँ तक जाते हैं और वहाँ से फिर उनको वापस आते हैं।
1: अच्छा, फॉल्क ने भी ये शुरू किया, क्योंकि जब आप
2: फॉल्क ने वो ये भी किया,
1: वो उन्होंने किया कि आप उनको कुछ थोड़ी सी रकम दें तो वो फिर आपको हॉस्पिटल वगैरह छोड़ आ सकते हैं, लेके आ सकते
2: हैं। जी, ये डिफरेंट है।
1: जी, अच्छा ये बताइए कि आपने 2010 में अपनी कंपनी शुरू की ना?
2: जी।
1: तो ये किस किस्म का कारोबार है, क्योंकि एक खातून का, पाकिस्तानी खातून की अपनी कंपनी बनाना, और इस ये किस किस्म की कंपनी?
2: ये ट्रांसपोर्ट है।
1: अच्छा।
2: जी आर ट्रांसपोर्ट उसका मैंने नाम रखा था, क्योंकि ये फ्लेक्स ट्रैफिक मैंने ट्रांसपोर्ट है। फ्लेक्स ट्रैफिक वैसे एक फर्म है यहाँ पे रजिस्टर्ड जो मूविया के अंडर आती है।
1: जी जी जी जी। हाँ।
2: लेकिन उनकी अपनी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, अपनी उनकी कोई गाड़ी नहीं है, अपनी उनका कुछ नहीं है। हम गाड़ियाँ खरीदते हैं तो हम फिर उनको एक अपनी ऑफर भेजते हैं, ओके मेरी ये टाइम पर आर मेरी ये प्राइस है, फिर उसके हिसाब से वो हर।
1: तो आप भी वही काम करते हैं जो फ्लेक्स वाले करते हैं या?
2: जी फ्लेक्स वही है। हाँ जी, मेरा मैंने फिर अपना बिजनेस लिया, क्योंकि इसके लिए आपको बकायदा कोर्सेज करना पड़ता है। मैंने टैक्सी का लाइसेंस लिया पहले, आप नॉर्मल लाइसेंस से नहीं चला सकते।
1: तो आपके मियाँ का भी तो टैक्सी का बिजनेस?
2: जी वो टैक्सी का है,
1: वो अलग है,
2: वो बिल्कुल अलग है।
1: वाओ।
2: तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था, नहीं आपने इंडिपेंडेंट होना है। मैं वैसे भी अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में भी इंडिपेंडेंट रही थी, अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ जो भी था, अपने भाइयों को भी सपोर्ट की इंडिपेंडेंट होने में।
1: तो ये आपके जो मियाँ हैं उन्होंने कहा तो अपना बिजनेस खुद शुरू करो,
2: उन्होंने कहा आप इंडिपेंडेंट हो।
1: वंडरफुल।
2: और इसके लिए आसान नहीं था, इसके लिए पहले मुझे वॉनमैन का कोर्सेस करना पड़ा।
1: जी जी। हाँ।
2: वो मैंने अपनी पे किया, यानी 25,000। उसके बाद टैक्सी का लाइसेंस, उसके बाद वो कोर्सेज होते हैं जो आपके एक्यूट, जो हम लोगों ने, यानी अगर कोई कंडीशन ख़राब हो जाए किसी की हेल्थ की या जो भी है, जिसे वो रेड क्रॉस के कोर्सेज कहते हैं, वो किए हैं, और हमारे हर तीन चार साल के बाद वो कोर्सेज रिपीट होते हैं।
1: बिल्कुल।
2: फिर उसके बाद मुझे बस का शौक था,
1: बस चलाने का,
2: फिर मैंने उसका लाइसेंस लिया, मैंने कहा मैंने नहीं छोड़ना।
1: बस भी चलाई है आपने?
2: चलाई नहीं है, लेकिन मुझे शौक, लाइसेंस मैंने ले लिया।
1: और टैक्सी भी नहीं चलाई?
2: टैक्सी कभी नहीं चलाई,
1: लेकिन लाइसेंस है आपको?
2: लाइसेंस, उसके बगैर मैं ये जॉब
1: नहीं कर सकती। तो आपको लाइसेंस इकट्ठे करने का शौक है?
2: मैंने बल्कि यहाँ पे वो जो लेट बेन है, मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने वो बंद कर दिए थे। मुझे वो भी चलाने का शौक है।
1: ये शौक कहाँ से आया?
2: मुझे बस, मुझे फिरने का, घूमने फिरने का
1: नहीं, वो तो अलग, वो तो बात है ही है, लेकिन ये खासतौर पर ये जो ट्रांसपोर्ट है, तो ये बड़ा इसमें तो स्ट्रेस होती है बहुत लोगों।
2: नहीं नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं।
1: नहीं, आप नहीं होती, लेकिन होती है लोगों को काफ़ी।
2: हर एक की नेचर होती है, मुझे खुद अपने, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, मैं जिस वक्त चाहूँ बंद कर दूँ, जिस वक्त चाहूँ निकल जाऊँ। टैक्सी से इस तरह डिफरेंट है।
1: आपके मियाँ नहीं कहते हेलो ये पैसा इधर लाओ?
2: नहीं, अपने मियाँ का सारा पैसा मैं कंट्रोल करती हूँ, वो सिर्फ उनके।
1: आपने फाइनेंस में भी किया हुआ है?
2: उनके जेब में तो सिर्फ 1,000 करोड़ होता है बस, इससे ज़्यादा नहीं।
1: पूर अच्छा तो क्या ये मुश्किल था ये कंपनी शुरू करना?
2: नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ मैंने अप्लाई किया और साथ उसके साथ जो पेपर्स वगैरह लगते हैं वो फौरन एक दो तीन दिन में मेरी कंपनी खुल गई। और फिर मैंने पहले ये अपने हस्बैंड के नाम से ली थी ये वाली फ्लैक्स ट्रैफिक, फिर मेरी जब खुद, क्योंकि जब तक मैं वन मैन कोर्स ना कर लेती मैं उसको नहीं चला सकती थी, अपने नाम मेरे नहीं थी हो सकती।
1: अच्छा, अच्छा,
2: तो वो जब हो गई तो वो फिर मैंने अपने नाम ट्रांसफ़र करी। अब मैं अपने, उससे पहले मैंने बिजनेस शुरू किया था यहाँ पे,
1: कोई और बिजनेस था
2: जी, मैंने पाकिस्तान से बेड शीट और शूज़ और खूसा ये वगैरह काफ़ी मंगवाया ऑनलाइन, लेकिन वो इतना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा पैसा उस पर किया, तो फिर मैंने सारा उठा के वो चैरिटी में दे दिया, वो जो पीटर साहब है ना जो डैनिश मुस्लिम हेड उनको। फिर उसके बाद मैंने एक रेस्टोरेंट खोला एल्बर्ट सलून में, दो तीन महीने मैंने उधर लगाए, लेकिन वो इतनी हार्ड जॉब है रेस्टोरेंट, क्लीनिंग से लेके स्टार्ट टू एंड बहुत लंबी जॉब थी। मैं बच्चों भी मेरे डिस्टर्ब हुए, मैंने 2.5 लाख राउंड तकरीबन उसमें भी यूज किया।
1: अच्छा, सॉरी,
2: तो उस वक्त मेरे पास ये बिजनेस था फ्लैक्स ट्रैफिक का, मैं इंडिपेंडेंट थी, लेकिन मैंने इसको शोफेयर रखा हुआ था आगे, ड्राइवर वो चलाते थे।
1: अभी है आपका ये बिजनेस?
2: जी अल्लाह का शुक्र है, मैं अब अकेली कर रही हूँ, मैंने कोई ड्राइवर नहीं रखा क्योंकि उन्होंने मेरी गाड़ियों को मार दिया था, एक्सीडेंट किया था और दो मर्तबा किया, और वो फिर
1: तो आप खुद जाती हैं काम?
2: जी अल्लाह का शुक्र है मैं खुद जाती हूँ, मैं इतना फिरती हूँ, इतना एंजॉय करती हूँ, इतनी इतनी जगहों पे जाती हूँ जो मैंने कभी नहीं देखी डेनमार्क में, लेकिन इधर पे जाके देखती हूँ मैं।
1: चलिए अब हम आते हैं एक दूसरे मौजू की तरफ
2: जी।
1: मैंने आपको देखा कई सियासी और समाजी तकरीबात में
2: जी,
1: और आप अपनी राय भी देती हैं और बहुत ईमानदार हैं अपनी राय देने में। तो ये जो आपके पास ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो है, ये फितरी तौर पे आई है या सीखा आपने कहीं से?
2: मैंने अभी आपको बताया था मेरी अपने बॉस से नहीं बनती।
1: नहीं वो तो अलग बात है ना,
2: नहीं वो फितरत में था तो नहीं बनती ना।
1: अच्छा,
2: अगर मैं उनकी जो बात गलत एक्सेप्ट कर लूँ तो फिर तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन नहीं है मेरी नेचर में कि मैं किसी की गलत बात बर्दाश्त करूँ।
1: तो ये फैमिली ने सिखाया आपको, पेरेंट्स की तरफ से?
2: नहीं ये नहीं, मैंने खुद से।
1: ऐसा होता है ना कि फैमिली में अगर आप कोई सियासतदान हो या कोई ऐसे लोग हों तो फिर आप
2: नहीं, मेरी फैमिली में कोई ऐसे नहीं गुजरा, लेकिन ये बचपन से मेरी अपनी रहा है कि मैं हमेशा से दूसरों पे, आप ये कह सकते हो कि मैं ओवरकम रही हूँ दूसरों को, मैंने दूसरों से काम करवाया है कि आप ये कर दो, यानी लीड किया मैंने।
1: जी, जी, जी, जी, जी, जी।
2: तो मेरा सियासत में जब तक मेरे बच्चे छोटे थे मैंने बिल्कुल अपने घर को टाइम दिया, बच्चों को टाइम दिया, माशाल्लाह एक 22 साल का एक 20 साल की है तो वो इंडिपेंडेंट है।
1: अच्छा,
2: तो फिर मैंने जब
1: अपनी तालीम ख़त्म कर ली है?
2: जी बेटे ने कर ली है, तो बेटी की अभी जाहिर है 20 अभी शुरू हो
1: गई।
2: तो उसके बाद मैंने जब यहाँ पे, पहले मैंने कश्मीर कमेटी ज्वाइन की, आपको पता है यहाँ पे कश्मीर कमेटी
1: जी, जी हाँ।
2: तो मुझे लोगों ने कहा कि आप बाजी जा रही हैं तो आपने करना कुछ नहीं, मैंने कहा मैं जाके सिर्फ देखना चाहती हूँ कैसे ये काम करते हैं, क्योंकि हमारी कमेटियाँ तो यहाँ बनी हुई हैं
1: जी,
2: बहुत सारी बनी हुई हैं, तो लेकिन हम अपने गोल अचीव क्यों नहीं कर पा रहे?
1: अच्छा सवाल है
2: ये, मुझे जिसे वो कहते हैं ना कि मुझे एक क्यूरियस थी कि हम इतना कुछ करने के बाद डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं, हर कुछ करते हैं, तो हम अपने गोल तक क्यों नहीं पहुंच रहे। तो जब मैंने वो ज्वाइन की, बड़ी माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी कभी किसी चीज़ से मुखलिस नहीं रहे। डेनमार्क में आके मैंने लोगों को देख के, दूसरे मुल्कों के लोग भी हैं, लेकिन मैंने जितना पाकिस्तानियों को मुनाफ़त भरा पाया है ना, शायद ही कोई होंगे, सारे नहीं होंगे, मैं सारे के बारे में नहीं,
1: हम उस पर बात करते हैं। लेकिन मैं जो एक और टॉपिक जिस पे मैं आपकी कीमती राय लूँगा वो ये है कि हमारी कम्यूनिटी में जेंडर इक्वालिटी के बारे में ना, मैंने आपसे बात की थी पहले भी ना, मैंने देखा है कि बहुत से मुलाकातें इवेंट्स होते हैं, अभी जो एक मुशायरे आए हुए थे वहाँ पे, तो ऐसी मीटिंग्स में मिडिल एज लोग या उधेड़ उम्र के लोग आदमी आते हैं ज़्यादा, ख़वातीन और नौजवान दो ये जो ऐसे हैं तबका वो नहीं आता बिल्कुल, उसके बारे में बताइए उसकी क्या वजह है?
2: देखिए जो नौजवान तबका है ना वो यहाँ की पैदाइश है
1: जी,
2: ठीक है, एक तो पहले उर्दू का मसला,
1: लैंग्वेज नहीं समझ आती,
2: लैंग्वेज उनको इतनी नहीं आती, मैं नहीं कहूँगी
1: तो उनको सिखाया क्यों नहीं उनके पेरेंट्स?
2: बेशक हमने सिखाया है।
1: अच्छा,
2: लेकिन आजकल के बच्चों का जो इंटरेस्ट है ना सोशल मीडिया के हिसाब से इतना डिफरेंट है कि आप उनको इस तरफ लाना भी चाहो तो नहीं ला सकते। सेकंड जो बात है वो जब सोशल मीडिया देखते हैं आप किसी बच्चे से कोई जब मेरे बच्चे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जाते हैं जब वो पाकिस्तान के हालात देखते हैं वहाँ से क्या लेके आ रहे हैं मैं उनको क्या ला के दे रही हूँ मैं लेके जाती
1: हूँ मायूसी जी जी
2: ठीक है। यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं अब मैं सिंपल एक बताती हूँ फलस्तीन का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ हमारे यंग गए यंगस्टर गए ना पाकिस्तान के जो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं यहाँ कभी पाकिस्तान का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ।
1: जब आप ये कहते हैं पाकिस्तान का डेमोन्स्ट्रेशन क्या मतलब है
2: पाकिस्तान ने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं की
1: किस लिए करें वो डेमोन्स्ट्रेशन
2: यहाँ पर करते हैं ये कश्मीर कमेटी है इसने डेमोन्स्ट्रेशन की ये तहरीक इंसाफ है ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है ये उनका ना तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक है क्या देगी तहरीक इंसाफ उनको कुछ भी नहीं उनका जब किसी ने पाकिस्तान नहीं जाना हमारे बच्चों ने हम नहीं जा रहे तो उनका भी उनका तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट क्यों है क्योंकि हम वहाँ के बॉर्न है हमारी अभी अफिलिएशन पाकिस्तान के साथ है।
1: वो सवाल है मेरे पास लेकिन मैं अगर उस जेंडर इक्वालिटी पे बात खत्म कर लें तो मैं
2: सॉरी आप वो आगे थी कि औरतें क्यों नहीं आती
1: नहीं औरतें हाँ जी चलिए औरतों के हाँ
2: जेंडर का यही था ना कि वो और हमारी ज्यादा कम्युनिटी जो आई हुई है वो कहाँ से आई हुई है ये थोड़े से जिसे कहते हैं बैकग्राउंड इलाके जो उनसे हैं जो लेट जो अब
1: जी जी जी
2: एक वहाँ का माहौल कि वहाँ पे इतने मिक्स नहीं थे होते आपको पता है पाकिस्तान में तो हमेशा से पहले तो
1: यहाँ तो बड़े अरसे से रोग रहे
2: यहाँ यहाँ जब आप आते हो ना अच्छा वो लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो वो जब इस तरह की महफिलों में वो एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो महफिलें ये आप जो करते हो जितने भी इस तरह की महफिलें अरेंज होती हैं जिसमें मुशायरा हो गया या ये जो
1: सियासी मीटिंग भी होती
2: हैं सियासी मीटिंग्स भी होती हैं उनको सियासत का शौक नहीं है उनको सियासत का शौर नहीं है इस तरह वो कभी गए ही नहीं। ये सियासत एक पढ़े लिखे का काम है जिसको समझ हो। एक सिंपल बात बताती हूँ हमारे जो पुराने लोग आए हुए हैं जो अभी तक सियासत में हैं सियासत में तो नहीं है लेकिन सियासत पार्टियों को सपोर्ट कर
1: जी,
2: रहे हैं
1: जी, जी, जी।
2: उनका क्या शौर है उनमें क्या शौर है अगर वो अभी तक बैठ के पाकिस्तान के जो हालात हुए अगर वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका क्या शौर है कुछ भी शौर नहीं। अगर मर्दों में नहीं है जो इतने लोग जाते हैं पार्टियों में या फंक्शन में सुनते हैं जाके उसके मुतालिक उसे सोशल मीडिया पर मर्दों ने देखा हुआ ना हमारी वो औरतें सोशल मीडिया पर नहीं हैं उनकी अपनी एक कम्युनिटी वो उसमें उछ रहती है।
1: लेकिन अगर सोशल मीडिया पे ना भी हों लेकिन जब वो किसी इवेंट्स में जाती है मसलन मैं जिक्र करता हूँ उस मशारे का जिसमें एक पाकिस्तान से शायर हुए थे लेकिन वहाँ पे मैंने ये देखा है कि वहाँ पे काफ़ी खातून आई हुई थी
2: जी बिल्कुल
1: ठीक है और पहली दफ़ा मैंने देखा है कि वो अपनी फैमिलीज के साथ बैठी थी अलग नहीं बैठी हुई थी उनको लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि जब ख्वातीन आती भी हैं अगर चंद आती तो उनको एक कोने में बिठा दिया जाता है। नहीं नहीं देखिए मैं बहुत सी मीटिंग में जाता हूँ रोहिना अक्सर ये देखा है कि ख्वातीन को एक साइड पर बिठा देते हैं या वो खुद ही पीछे बैठ जाती हैं कितने इसकी वजह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप खातून हैं आप बड़ी एक्टिव हैं डेनिश माशरे में जब मीटिंग्स होती हैं किस किस्म की तो लोग इकट्ठे बैठते हैं बातें होती हैं बड़ी मुफीद बातें होती हैं एक दूसरे से लोग सीखते हैं तो हमारे जो हमारी ख्वातीन वो अलग क्यों बैठती हैं उसकी आप मुझे वजह बताएं।
2: पहले मुझे ये बताएं कि ये जितने फंक्शन या मीटिंग होती हैं अरेंज कौन करता है मर्द के औरत मोस्टली
1: नहीं मर्द करते हैं
2: वो जब औरतें आती हैं तो वो उनको कहते हैं जी आप इधर बैठ जाएं तो बिठाने वाले तो वो हैं
1: नहीं तो इनकार कर दें कि जी मैं उधर नहीं बैठती मैं
2: जो बैठना चाहती हैं वो बैठती हैं ये एक रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि औरतों की अपनी डिस्कशंस होती हैं जो वो मर्दों में बैठ के नहीं करना चाहती क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अपने हस्बैंड के साथ आई वो अपने हस्बैंड के साथ बैठती है नो प्रॉब्लम वो बैठती है जो नहीं आई वो अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल हमारा एक बैकग्राउंड भी देखे ना हमारा क्या है और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ के लोग इस चीज़ को नहीं समझते मैं खुद जब मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठती हूँ बल्कि इवन शादियों में मैं उनको कहती हूँ आप जाओ उधर दोस्तों में, मैं अपनी बैठ, क्योंकि मैंने जो गप्पे लगानी है वो मैंने अपने हस्बैंड के दोस्तों के साथ
1: लगानी है। तो आप गप्पे लगाने की थोड़ी जाती हैं, आप तो एक खास, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी जुमेरात को हमने एक यहाँ पे नेल्सन मंडेला डे मनाया है कोपेनहेगन में, और हमने काफ़ी मुख्तलिफ नेशनैलिटी के लोगों को इन्वाइट किया, मर्द और ख़वातीन, उसमें कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज़ को भी इन्वाइट किया, और वहाँ पे हमने हर टेबल पे नाम लिखा और मिक्स किया, जहाँ पे डेनिश भी, गैर मुल्की भी, अफ्रीकन, पाकिस्तानी सब बैठे होते, वहाँ किसी ने नहीं कहा कि जी हम गप्पे मारने के लिए उधर बैठेंगे?
2: नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो आपकी सिर्फ अपनी कम्युनिटी नहीं थी, वो एक आपके बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग थे,
1: तो वहाँ भी तो बैठे थे, उनके उन्होंने बातें की हैं।
2: मैं आपको कह रही हूँ ना कि हमें प्रॉब्लम नहीं है,
1: अच्छा,
2: कि ये सिर्फ औरतों पे नहीं है कि वो अलहदा बैठना चाहती हैं, बस ये होता है कि आपका वो जो फंक्शन है वो क्या है, उसके हिसाब से अगर वो समझती हैं कि नहीं इसमें हम, डिपेंड करता है ना कि आपकी सीटें भी कैसे लगी हुई हैं, अगर तो आपकी रो वाइज लगी हुई हैं तो वो फिर औरतें कहती हैं कंफर्टेबल है कि हम अपने साथ अपनी,
1: नेक्स्ट टाइम कोई
2: लेकिन अगर
1: होगा
2: राउंड
1: तो
2: बैठी हो तो फिर वो मिक्स भी बैठ सकती हैं किसी के साथ।
1: ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये उनकी
2: सेटिंग भी जिनसे,
1: देखिए जब खवातीन अपने हकूक की बात करती हैं तो उनको अपने हकूक छीनने पड़ेंगे, आपको कोई मर्द कोई आपको आपके हक नहीं देगा। अच्छा, अगला सवाल मेरा यह है कि आप डेनमार्क में पाकिस्तानी सियासत में भी काफ़ी सरगर्म हैं, आपने तकरीरें की हैं कई दफ़ा, तो ये बताइए कि ये जो आप मुजाहरों में हिस्सा लेती हैं और तकरीर की है, क्या पाकिस्तानी सियासत को डेनमार्क में लाना दुरुस्त है?
2: देखिए हम पाकिस्तानी सियासत को डेनमार्क में नहीं ला सकते,
1: लाए हुए यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों के दफ्तर हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के हैं,
2: हम सिर्फ यहाँ बैठ के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम अपना पैसा पीछे भेज सकते हैं तो हमारी यहाँ वहाँ पे फैमिलीज बैठी हुई हैं
1: जी,
2: वो वहाँ पे रह के वो कुछ काम नहीं कर सकती, क्योंकि मोस्टली जो बाहर से लोग हैं वो वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो जब वो सपोर्ट करें तो हम वो काम यहाँ जो वहाँ नहीं कर सकते, हम यहाँ बैठ के उनको एक किस्म की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो थोड़ा बहुत, इसमें हमने पाकिस्तान में सियासत में तो हिस्सा नहीं लिया
1: नहीं, ना वहाँ मैं पे वो किसी वहाँ की सियासत की मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो मसलन मुस्लिम लीग है या कश्मीर कमेटी है या तहरीक इंसाफ है, उसमें जो है वो यहाँ पे एक्टिविटीज़ करते हैं कुछ, हालांकि वो ज़्यादा कर सकते हैं नहीं करते, लेकिन उससे एक नुकसान ये भी हो सकता है कि उनकी जो वहाँ पे फैमिली जिनकी आप बात करें उनको प्रॉब्लम पड़ सकते हैं,
2: पड़ सकती है
1: और पड़ते हैं।
2: इस वक्त हर बंदा जो उनसे डरा हुआ, मेरी जब भी पाकिस्तान में बात होती है भाइयों से, मैं उनको ये कहती हूँ, मैंने कहा बेटा एक बात याद रखो, हर घर में से जब तक एक जनाजा नहीं निकलेगा इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, रियली
1: रेवोल्यूशन आना चाहिए उधर
2: आना चाहिए वहाँ पे, जब तक रेवोल्यूशन नहीं आएगा आप सियासत पे आए, मैं आप एक बात मैं यहाँ पे कर दूँ, ये जो नून लीग वाले बेस्ट या जो पीटीआई वाले या जलसे वगैरह जो करते हैं ना, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो कश्मीर वाले हैं हमारी तहरीकें कामयाब क्यों नहीं होती, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान के लिए नहीं उठते, कश्मीर वाले कश्मीर के लिए नहीं उठते, अगर नाम है तहरीके कश्मीर, कश्मीर सिर्फ आज़ाद तो और गुलाम कश्मीर तो नहीं है, कश्मीर कश्मीर है। अब वो जब पिछले चार साल से पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जब अब जो कश्मीर में हो रहा है, कहाँ है वो तहरीके?
1: आप किसी पार्टी को सपोर्ट करती हैं?
2: मैं पीटीआई को करती हूँ।
1: आप पीटीआई के मेंबर हैं?
2: जी, मेंबरशिप मैंने ली हुई है बिल्कुल।
1: अच्छा, तो उससे जब आप कोई बयान देती हैं या कुछ कहेंगी तो उससे पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके फैमिली को?
2: होना नहीं चाहिए, अगर
1: नहीं होना नहीं चाहिए वो तो है, लेकिन होता तो है ना,
2: होता तो है। देखिए मैं पीटीआई को सपोर्ट करती हूँ, मैं एक नज़रिए को सपोर्ट कर रही हूँ, जो इमरान खान ने नज़रिया दिया हुआ है।
1: अच्छा,
2: हमारे यहाँ पे जो लोग करते क्या हैं, वो जो सपोर्ट करते हैं ना, वो पीटीआई को नहीं सपोर्ट कर रहे, वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। जो नवाज शरीफ के पीछे लगे हुए, नून लीग के पीछे नहीं लगे हुए, वो नवाज शरीफ के पीछे लगे हुए हैं। ये फेवरेटिज्म, जो शख्सियत का फेवरेटिज्म है ना, मैं इसके खिलाफ हूँ।
1: अच्छा, आपने यहाँ पे किसी सियासी पार्टी में हिस्सा लिया या सियासत में हिस्सा नहीं लिया? नहीं,
2: मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि सियासत में हिस्सा लूँ।
1: वो क्यों? आप यू आर क्वाइट आर्टिकुलेट।
2: मैं पीछे रह के सपोर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि जो पीछे रह के सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सारी दुनिया असेंबली में नहीं पहुँच सकती। अब यहाँ पे जो सियासत हो रही है, हमारे जो पाकिस्तानी आए हुए हैं, दो लोग थे एम एन ए शिप पर कहूँगी, नेशनल असम्बली पे, अब वो भी नहीं है। अब कितने हैं नेशनल असम्बली पे हमारे?
1: हमारे क्या मतलब, क्या मुल्की या
2: पाकिस्तानी हिसाब से?
1: कोई नहीं है,
2: कोई पहले दो थे,
1: पहले,
2: ना?
1: पहले थे, हाँ।
2: क्या किया उन्होंने?
1: अच्छा, आप ये बताइए कि डेनमार्क, अभी हम डेनमार्क की बात कर रहे हैं ना, डेनमार्क में है, अभी आपने देखा होगा कि नस्ल परस्ती, रेसिज्म डेनमार्क में, इस्लामोफोबिया बहुत बढ़ गया पिछले चंद सालों में, ख़ासतौर पर सियासी बयान आ रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, हमारे आने वाली नस्लों को प्रॉब्लम होंगे, हम में तो हैं ही हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि जो आप बात सुन रहे हैं, इसको हम किस तरह टैकल कर सकते हैं, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से नहीं, बल्कि एक मुसलमान होने की हैसियत से और गैर मुल्की होने की हैसियत से?
2: देखिए, अगर मैं एज अ मुस्लिम इमेज कहूँ ना, तो जो लोकल कम्युनिटी है ना, या आम डैनिश है,
1: जी,
2: उसमें बहुत अच्छा इमेज है।
1: अच्छा,
2: मेरे कस्टमर जो उनसे है ना, हैंडीकैप है हालांकि, लेकिन जब मैं उनसे बात करती हूँ ना, वो मैं पाकिस्तानी में ये वो, ओ मेरा नेबर पाकिस्तानी है, बहुत अच्छा है, वो तुर्की है।
1: लेकिन वो तो वन टू वन हो गई ना।
2: नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, ये स्टार्ट होती हैं बातें हमारे, अगर मैं ये कहूँ तो मौलाना की तरफ से, जो हमारे इस्लामी लेवल के बैठे हुए लोग हैं, हमें इस लेवल तक उन्होंने पहुँचाया है अपने गलत फतवों और गलत जीलों की चला से।
1: लेकिन यहाँ तो फतवे नहीं देते वो,
2: लेकिन रजिस्ट करते हैं ना, जिस तरह अब यहाँ पे एक वो बंदे ने कुरान जलाने की कोशिश की थी।
1: जी जी, हाँ हाँ,
2: मैं खिलाफ हूँ। हमारी हमारी जो सी है ना, ठीक है, वो हमारी होली बुक है, हमें रिस्पेक्ट है, सारा कुछ है,
1: जी जी।
2: हम किसी को जलाने नहीं देते, वो कुरान जला रहा है, हम फौरन खड़े हो जाते हैं, और ख़ुद हम कुरान के साथ क्या करते हैं, जब वो फट जाता है उसको जाके नहर में फेंक करते हैं, या उसको जला के ज़ाया करते हैं, हम भी तो यही करते
1: जी
2: हैं ना। हमें यहाँ पे
1: उसके,
2: वो लोग
1: उसके मकसद डिफरेंट है, वो जो करता है
2: exactly,
1: उसका मकसद और है, जो हम लोग
2: exactly,
1: करते हैं वो इज्जत के लिए
2: exactly,
1: करते हैं, फेंका ना जाए उसको।
2: इसके लिए ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे मुसलमान सियासतदान हैं, उनको इसको अपनी अपनी पार्टी के लेवल पे देखें, हर हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम क्रिश्चियन की भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे नबी की औलाद में से हैं, उसको मानते हैं, हम उसको ना माने तो हमारे दीन से खारिज हैं, क्योंकि हमने उस नबी को मानना है
1: जी।
2: लेकिन हम उनको खुद अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, वो हमारी जिसे कहते हैं ना दुखती रग को जानते हैं, और वो जानबूझ के हमें जिसे कहते हैं ना शुरली छोड़ना, कि इनको किसी ना किसी तरफ लगाई रखो, हल्का सा शोशा छोड़ के उनको उस तरफ लगा देते हैं, मुसलमान रिएक्ट करना, जलाओ घिराओ, झंडे जला रहे हैं, भाई क्यों? जो चीज़ अब इमरान खान की बात करें, उसने जाके इस्लाम पे बात की थी ना, वो एक फॉर्म था जहाँ पे उसने बात की, उसको माना गया, तो हमारे लोग
1: हशर भी तो देखना क्या हुआ उसका,
2: वो हमारे अपनों ने किए,
1: वही तो कह रहा हूँ। लेकिन आप बात कर रही थी मौलानों की या मौलवियों की ना,
2: मौलवियों
1: का इस मुआशरे में कोई किरदार हो सकता है?
2: जी बिल्कुल हो सकता है।
1: बताइए,
2: हमारे जितने सारे मौलवी सारे मुल्कों के,
1: जी,
2: सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, वो सारे बैठ के बात करें, वो जाहिर है वो सियासत वालों से बात तो कर सकते हैं ना, जब वो सारे एक पेज पे इकट्ठे होंगे तो आपकी बात क्यों नहीं सुनेगा? लेकिन हम मुसलमान एक पेज पे हैं कहाँ, किस मसले में हम एक पेज पे हैं? कोई एक मसला बता दें यहाँ पे जो है, कि जिस पे हम एक पेज पे खड़े होकर उनको कहें जी हमारा ये प्रॉब्लम है आप सॉल्व करें। जो मज़हब के ठेकेदार हैं वो तो आगे आते नहीं हैं, वो छोटे छोटे पीछे लोग हैं जो उनसे उनको आगे कर देते हैं, सोशल मीडिया को आगे कर देते हैं, और अपने खिलाफ खुद ही लोगों को कर लेते हैं। अगर आपको
1: तो इसका मकसद ये हुआ रोहिना के यहाँ पे मौलाना जो आते हैं उनको नहीं आना चाहिए?
2: नहीं, मैं ये नहीं कहती कि मौलाना नहीं आते, लेकिन
1: आना चाहिए गवर्नमेंट,
2: अगर वो आते हैं तो अगर किसी ने अपने लिए, हालांकि यहाँ भी अब लोगों ने एजुकेशन ली है, अब लोग उनको ज्यादा पसंद करते, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को उनकी लैंग्वेज में समझाओगे तो वजह जो दूसरे मुल्क से लेके आते हैं वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज में समझाएगा उनको, यहाँ की लैंग्वेज बहुत जरूरी है। मैंने बच्चों को कुरान पढ़ाया,
1: मुआशरे को समझना बहुत जरूरी है।
2: मैंने बच्चों को कुरान पढ़ाया अरबी में, ठीक है, उसके बाद
1: उर्दू बोलते हैं वो,
2: बोलते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, बिल्कुल है।
1: अच्छा, अच्छा।
2: लेकिन कुरान पढ़ाने के लिए जब मैंने उनको कुरान समझाना है, एक मरतबा मैंने अरबी में पढ़ा दिया, फिर मैंने कहा जी अब मैंने डैनिश में कुरान खरीदा।
1: Very nice.
2: फिर मैं पढ़ती तो मैंने कहा जी ये एक सफ़ा आपने पढ़ना है अरबी में पढ़ो, اب ایک ایک آیت کا دیکھو ڈینش میں کیا ترجمہ ہے. میں اردو میں پڑھتی تھی, میں ڈینش میں, وہ کیونکہ میں ان کو ایکسپلین کر سکتی.
1: جی جی.
2: میری, میں نہیں کہوں گی کہ میری بہت اچھی ڈینش ہے,
1: نہیں نہیں, پھر بھی
2: میں بول لیتی ہوں, لیکن چونکہ وہ قرآن کا مسئلہ تھا اس لیے میں نے ان کو, پھر میں ان کو کہتی تھی ہاں آپ سمجھ آئیے ان کو, یعنی اس لینگویج میں میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اب آپ سمجھو قرآن کو کہ قرآن کیا لکھا ہوا ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن ہے کیا. عربی از نت انف نہیں ہے, یا تو میں ان کو شروع سے عربی پڑھاتی سمجھاتی,
1: اور پھر ان کی مادری زبان بھی نہیں ہے. جی ہاں بالکل
2: ٹھیک ہے. اب جب یہاں پہ آپ مولوی لے کے آتے ہو, آپ کو چاہیے, یہاں پہ بہت سے لوگوں نے قرآن پڑھا سمجھا عربی, اب ہیں لوگ میں نے دیکھے ہیں, تو وہی ان بچوں کو قرآن پڑھائیں بھی سمجھائیں بھی. اور سب سے زیادہ قرآن پڑھانا از ناٹ امپورٹنٹ, آپ نے بچے کی تربیت کرنی ہے.
1: Exactly.
2: گھر والے تو کرتے ہیں, لیکن جب آپ قرآن پڑھاتے ہو مسجدوں میں جاتے ہو تو وہ بھی ایک تربیت کا ذریعہ ہے. پاکستان میں سب نے قرآن پڑھا ہے, میں نے پڑھا ہے ہر رمضان میں, یہ جی میں 5 قرآن ختم کیتی ہوں, میں 10 قرآن. کتنوں نے اردو میں پڑھ کے اور اس کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا. ہم, میں ایک چھوٹا سا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ جاؤں گی. ابھی کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا, پاکستان میں اسلام کہاں ہے, کتنے لوگ ہیں وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں, کوئی بھی نہیں, کہیں بھی نہیں. ہمارے پولیٹیشن سے لے کے ہمارے ایک عام بندے کے تک پاکستان میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں.
1: چلیے روہینہ, ہمارا بھی ٹائم ختم ہو گیا, ہمارا ایک دوسرا پروگرام شروع ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئیں, اپنے قیمتی وقت دیا آپ نے اور اپنے خیالات سے. میں چاہتا ہوں کہ سمر کے بعد پھر آپ کو بلائیں, اور ایک ٹاپک جو ہے وہ ہو خواتین اور بزنس.
2: جی,
1: وہ ایک, کیونکہ آپ کی اس میں مہارت ہے بہت, آپ انڈیپینڈنٹ بزنس وومن ہیں, تو وہ آپ ٹھیک ہوگا اگر ہم آپ کو دوبارہ بلائیں.
2: جی بالکل. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میں جس بزنس میں ہوں, میں اس وقت میرے خیال پاکستان کی پہلی تھی جس نے اس بزنس میں آئی تھی, لیکن اب کافی ساری.
1: نہیں تو مشورہ دے سکتی ہیں خواتین کو بزنس میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا.
2: آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے رائے کا اظہار کرنے کا ایک موقع فراہم کیا. شکریہ جی سب کو. جی اللہ حافظ.
1: سامعین و ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام روہینہ طاہر صاحبہ کے ساتھ, اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے ان کی جو باتیں سنی ہوں گی اس میں کئی باتیں جو ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے سامعین و ناظرین جو ہیں وہ جن جو باتیں ہم کرتے ہیں اس پہ عمل کریں یا کوشش کریں کہ اس پہ عمل کریں. تو اگر اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, ڈینمارک پائندہ باد.
3: آپ اور ہم وطن ایک سنگ, نئے رنگ نئی امنگ. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84, ای میل ریڈیو سنائپلائی ہم وطن پہنچو.